नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI

कथित एलआईसी निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमडीएल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें

0: रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जन सेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के

0: इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
1: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
2: The government is supporting the sector through technology transfers.
3: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
1: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
3: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल

0: बंगाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में, खासकर दक्षिणी हिस्सों में, वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
1: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला 2 उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। 2 न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान 2 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 8:40 हो चुके हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, मस्त मुंबई में स्वागत है आपका। सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल, सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव।

यानी कि 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हो। मैं हूँ आपके साथ आपकी RJ, आपकी दोस्त मृण्मयी मनजा। अभी सुबह 11 बजे तक का हमारा साथ रहेगा, तो शुरू करते हैं। वैसे भी इस वक्त तो जिन लोगों का गणपति 5 दिन तक रहे होंगे वो तो कल विसर्जन डांस करके हाय क्या सोए होंगे, और अभी सुबह सुबह काम पे जाने का मन कर नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी जितना विघ्न हमारे जीवन में भरा हुआ है, बांजो का ये गाना इससे शुरू करते हैं, विशाल डडलानी।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

जिया यानी हमारा दिल, जी उठाओ फिर से, जिया जिया रे। क्या खूबसूरत लिखा है ना गुलजार साहब ने, और मतलब भी कितना प्यारा कि सिर्फ दिल होने से सीने में कुछ नहीं होता, जीना भी पड़ता है। जब तक है जान फिल्म से ये गाना सुन रहे थे नीति मोहन, और रैप वाला जो पार्ट है सोफिया अशरफ की आवाज में।

तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, हमें पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो जो लोग खास तौर पे न्यूज़ ऑन AIR ऐप से हमें मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर से सुन रहे हैं, तो उनको बता दूं कि क्यों हम बप्पा की बात कर रहे थे। यहाँ अलग अलग दिन के गणपति रखते हैं लोग, तो जो गणेश पूजा यहाँ होती है बहुत ही धूमधाम से होती है, ढोल ताशे के साथ होती है, और विसर्जन का जो अवसर होता है वो भी नाच गाने के साथ बहुत ही ज़्यादा बप्पा फीवर होता है। और फीवर के साथ साथ मुझे भी बुखार हो गया तो इसी तरह आगे पीछे कहीं सोसाइटी की आपकी गणपति होगी, फिर आपको ऑफिस भी भागना रहता है, अलग अलग चीज़ें यहाँ होती रहती। इतनी ज़्यादा बिजी चल रहे होते हो ये कुछ दिन यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में यही वाला हाल है। आज है 19 सितंबर और आज है दिल का फसाना, क्योंकि आज है शनिवार। मस्त मुंबई में हर बार हम कुछ अलग लेके आते हैं दिन के हिसाब से, तो आज है, आज की थीम दिल का फसाना। One more time.

0: आप सुन रहे हो मस्त मुंबई 107.1 एफएम रेनबो पर अपनी आरजे मृन्मयी मनजा के साथ। और 19 सितंबर दिल का फसाना क्या ही बताएं, इतनी सारी चीजें हैं आज। वैसे तो हिंदी पखवाड़ा भी चल ही रहा है, आपको पता ही है कि 14 सितंबर से लेके सितंबर महीने के आखिरी तक चलता है, यानी कि 30th तक तो चलेगा ही, वो तो है ही। उसके साथ साथ आज किस किस सितारे की जिंदगी में झांक के देखेंगे।
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
2: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
1: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
0: अब दिल का फसाना यूं है कि इतनी सारी बातें करनी होती है आपसे, 8657-6607-8657-66-1071, जहां के हमारे जो सारे पुराने श्रोता है वो तो सबसे पहले ही 8:41 से ही गुड मॉर्निंग बोल चुके हैं। पुणे से प्रमोद खारकानस हैं, विश्वास हैं, सुबदा बिल्कुल आपको भी गुड मॉर्निंग, और बप्पा मोरिया जी, प्रणव शिंदे भी हमें लिख के भेज रहे हैं कि मस्त मुंबई शो में बहुत ज़्यादा खुश है। विक्रम आठ वाले हमारे

साथ मीरत से हैं, उनके साथ विद्या भी है, और पंकज जैसे कि हमेशा की तरह गणेश जी विराजमान रहते हैं, उस बारे में फिलहाल उन्होंने हमें लिखा हुआ है। तो जानकारी कैसे, हर किसी का अलग होता है वैसे त्यौहार। जैसे ईस्ट इंडिया में हमारे यहाँ तो एक दो या तीन दिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रहता है, बट महाराष्ट्र का जो बप्पा फीवर है बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर अलग ही रहता है। प्रमोद, ये दूसरे वाले प्रमोद है, कल्पना राजू भी हैं उल्लासनगर से, और सुनने की जो आदत है ये जो ढोल ताशे की, वो भी एक अलग लेवल का आपको जोश डाल ही देता है। बात तो सही है। गया बिहार से चेतन है, मनपुर है, ये सब जो है जान रहे हैं हमारे यहाँ क्या क्या होता है उसके बारे में। बिल्कुल। और विजेंद्र, मजाक क्यों नहीं किया, ये आप पूछ रहे थे ना, अब ऐसे आप चाय का कप भेजेंगे वो भी आधे से भी कम, असली वाला, इस बार इमोजी वाला नहीं भेजा, तो मतलब अब इस पर मैं क्या मजाक करूँ अपनी किस्मत पे है। असली वाला स्टूडियो भेजना चाहिए कि नहीं। ये गाना आपके लिए, लो हो गया मजाक।

0: तेरा जादू।
1: करम फिल्म का ये गाना सुन रहे हो पंकज अवस्थी की आवाज में। अमित मिश्र भी साथ और विशाल शेखर का है ये म्यूजिक। और सुन रहे हो 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स पर।

सच में जिंदगी में लोग इतने क्रूर हो जाते हैं ना, उन्हें अपने कर्म का तो एहसास ही नहीं होता। नहीं, मजाक अपनी जगह है, थोड़ा सा अगर हम सीरियस हो जाए ना तो मैं मतलब दिल का फसाना आपसे शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। मतलब सोशल मीडिया में जैसे हम देखते रहते हैं, इतने सारे जो हमारे सितारे हैं उनकी जिंदगी में भी संघर्ष होता है। सोचो, हमें लगता है कि वो लोग तो पर्दे पे हैं तो उनका क्या ही है, लेकिन एक एक सेकंड पर इतनी सारी ट्रोलिंग होती है, क्या नहीं होता। मतलब कभी कभी ना विश्वास ही नहीं होता कि ये हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं ये लोग जिनको पता ही नहीं है कि एक औरत का शरीर कैसे बदलता है जब कोई माँ बनती है तो, है ना। कुछ भी हो सकता है, या तो किसी की ज़िंदगी में कोई बीमारी है, कुछ ऐसा हो, या आपको पता ही है कैटरीना कैफ जैसे माँ बनी है तो जाहिर सी बात ऐसा तो होगा ही। उनके रीसेंट लुक को लेके इतनी ट्रोलिंग भाई साहब की, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी सितारे जो हैं उनके फेवर में लिख रहे हैं कि क्या हो गया है समाज को, है कुछ तो सोच के लिख लिया करो। आप लोगों की खुद की माँ भी उसी सैक्रिफाइस से, त्याग से गुजर चुकी हैं, उनका भी जो बॉडी है उसी तरह पूरी तरह बदल चुका है। इतना कुछ झेल के आपको इस दुनिया में लाए ताकि आप इस तरह के कमेंट्स करो, बुली करो, वो भी किसे, कैटरीना कैफ को।

बात सही है एकदम। इन लोगों ने तो ऐश्वर्या राय तक को नहीं छोड़ा, उनको भी उसी तरह के कमेंट्स आते थे। मतलब इतनी बेहतरीन अदाकाराएं, हमारी अभिनेत्रियां, जिन्हें पूरी दुनिया में माना जाता है कि इतनी ज़्यादा सुंदर हैं, सोचो उनको भी लोग नहीं छोड़ते, इतने क्रूअल हो सकते हैं, क्रूर हो सकते हैं। तो मतलब हम लोग अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को, सोचो जो लोग लाइमलाइट में रहते हैं उन लोगों के लिए किस तरह वो महसूस करते हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है, कैसे वो सेट पे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। नज़रअंदाज कर दो, कहना बहुत आसान होता है, पर जो कलाकार होता है कहीं ना कहीं थोड़ा तो फ़र्क पड़ता होगा ना। तो ये वाली बात है कि सितारों की जिंदगी में भी इतने सारे संघर्ष होते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गाना आपको सुनाती हूँ, और इसी बात पे थोड़ा पीछे भी चलेंगे। 19 सितंबर के दिन क्या हुआ था? 19 सितंबर को मुंबई, सिंपल सा सवाल, 2007 में कहाँ थे? थोड़ा सा आपको क्लू देने वाली हूँ इस गाने के साथ।

0: कुछ याद आया? ये गाना वैसे आ रहा है आपके पास, लेकिन हाँ आज ही के दिन कुछ खास हुआ था और वो जो कमेंट्री थी वो भी मैं मतलब आपसे चलो मिलके बात करते हैं उसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद।
1: खास गणेशोत्सव निमित्त जय गणेश नवीन डिपॉजिट स्कीम।
2: व्याज दर सर्वसाधारण ठेवीदार 7.25%, ज्येष्ठ नागरिक 7.40%, ठेव कालावधी 444 दिवस, मासिक आणि त्रैमासिक व्याजांच्या पर्यायांसह।
1: ही योजना फक्त 25 सप्टेंबर 2026 पर्यंतच, अटी लागू।
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध।

बहुत सारे जवाब जो हैं आसपास तो हैं, लेकिन सही स्मिता आपका है, क्योंकि मैंने कहा ही था भाई क्लू जो है वो गाने में है, और गाना जो है वो क्रिकेट वाला था, है ना, MS धोनी फिल्म का ये गाना था जिसमें युवराज का किरदार भी था, और ये अमाल मलिक म्यूजिक के साथ, मनोज के लिरिक्स के साथ सुन रहे थे आप 107.1 म्यूजिकली योर्स FM रेनबो पर। और बात कर रहे थे कि 19 सितंबर को क्या हुआ था, एकदम सही जवाब, आज ही के दिन 6 छक्के लगाए थे उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि ये तो जो भी क्रिकेट के फैंस हैं उनके दिल में ये बात छपी गया था। डर्बन में किंग्स मीड इंग्लैंड के विरोध में, जब उन इंग्लैंड के ऑपोजिट जब इंडिया खेल रहा था, स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलर थे, और उस वक्त जो ये छक्के लगाए गए हैं 6 बैक टू बैक, तो कमेंट्री बॉक्स से लेकर चिल्लाते चिल्लाते देश के अलग अलग ड्राइंग रूम्स के टीवीज तक जो सब लोग पागल हुए थे, पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि ये सबको याद रह ही गया है।

0: धुरंधर द रिवेंज का ये गाना सुन रहे थे आप, मैं और तू, शाश्वत सचदेव, जैस्मिन और रेबल का रैप उसके साथ में। सुबह सुबह जिस जोश की जरूरत होती है बिल्कुल वही, और शनिवार को हम, शनिवार के दिन का थीम आपको पता ही है, दिल का फसाना, जिसमें हम संघर्ष की बात करें तो, और युवराज सिंह का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है कि कैसे उनकी ज्यादती जिंदगी के संघर्ष के बारे में बात न करें। कैंसर से भी जूझकर, जिन्हें कहा जाता है कि शेर हैं शेर, लेकिन फिर भी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि हर इंसान को तोड़ के रख देती है। ऐसे बहुत आसान तो किसी के लिए भी नहीं होता, हम लोगों के लिए तो चले मुश्किल होता ही है, सितारे भी इतने सारे हमारे इस बीमारी से जूझकर कई सारे लोग आगे बढ़कर जीतकर वापस अपने खेल में या पुनः अपने पर्दे पर आकर अपना काम कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जिगर चाहिए इसके लिए, उतनी हिम्मत और उतना जज्बा भी चाहिए कि आप इस संघर्ष का सामना कर सको। जब कभी भी अपनी परेशानियाँ ज़्यादा लगे तो बस हथौड़ा लेके पूरी तरह अपने सर पे नहीं मारने, थोड़ा सा, मतलब ऐसे ही ख्यालों में, सच में नहीं मारना, ऐसे ही दिमाग में बात डाल देनी है कि लोग कितनी सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना कम लगेगा कि भाई गुजरता ही जा रहे, गुजरता ही जा रहे, अपनी जो समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जो सियापा अपनी ज़िंदगी में चल रहा है, उस वक्त जिस सितारे का मैं जिक्र कर रही थी, वैसे अली जफ़र उनका गाना भी निकाल के ले आई, क्योंकि बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया हुआ है।
1: कुछ रखेगा ना हमारी आशा,
2: जरा ऊंचा बोल, पंजाबियों का घर है।

0: ये 200 लीटर आंसू वाला गाना आ रहा है आपके पास थोड़ी ही देर में।
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
2: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
1: ये योजना

0: केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
1: क्यों बेटा, खुश रखेगा ना हमारी आशा को?
2: जरा ऊंचा बोल, पंजाबियों का घर है।

क्या फिल्म थी सही में, जिस तरह के तो गाना है लेकिन फुल ऑन कॉमेडी है। गाने से तो समझ ही गए होंगे कि किरण खेर भी हैं ही इसमें, जो कि यामी गौतम की माँ बनी हुई थी। और लड़की के घर पहली दफे जब आप जाते हो शक्ल दिखाने, तो जो दिल धक धक धक धक कर रहा होता वो तो चलो अलग ही बात है। और यहाँ एक के बाद एक के बाद एक गुगली थी इस फिल्म में टोटल सियापा। और मतलब जाते जाते ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसको बस ऐसा लगता है कि उसके हाथों लड़की के पिता की मौत हो गई। समझ रहे हो ना, अब इससे बुरा क्या हो सकता है। उसके बाद जो हुआ है, तो ये कभी कभी कॉमेडी भी बहुत सही हमें मिल जाती है, नहीं क्या?

0: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर मुंबई का सबसे पहला एफएम चैनल।
1: एक था टाइगर का ये गाना सुन रहे थे मोहित चौहान तरनम मलिक की आवाज में, कौसर मुनीर के लिरिक्स सुहेल सेन, म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो मुंबई पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनेजा, और खास तौर पे बात कर रहे थे संघर्ष की। और युवराज यानी हमारे यूवी को कौन नहीं जानता, थोड़े बहुत लोग भूल भी जाते हैं। जिस तरह से आपने भी हमें मैसेज करके लिखा हुआ है कि बहुत सारे सितारे हैं जो कि इस तरह की बीमारियों से गुजर चुके हैं, मनीषा कोइराला हुई, सोनाली बेंद्रे, बहुत सारे लोग हैं, हिना खान है, लेकिन यूवी की जो बात हम कर रहे थे, ये जो उनके साथ हुआ था काफ़ी थोड़ा सा रेयर वाला कैंसर उनको हुआ था, और क्योंकि आज ही के दिन उनके 6 छक्कों की एनिवर्सरी है, साल गिरा है, तो हम उनका जिक्र कर रहे थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड कोई जीते तो आपको भी लगेगा ना कि सब कुछ सही चल रहा है। जब भी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता ना कुछ हो जाता है। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ये बात है। उस समय बहुत ज़्यादा थकान, सांस लेने में समस्या, और यहाँ तक कि जब वो खांस रहे थे तब भी खून निकल रहा था, तो ये उन्हें पता नहीं था उस वक्त के ट्यूमर है हार्ट और लंग्स के बीच में। और फिर सारे डॉक्टर्स ने जब उन्हें बताया कि उनकी जान को खतरा है, कुछ ही महीने दे दिए बस जिंदा रहने के लिए अगर आपने कीमोथेरेपी नहीं की तो उस वक्त क्रिकेट को छोड़कर अपनी रिकवरी के लिए जाना, ये भी कितना बड़ा एक मतलब कदम होता है जब आप जिंदगी और मौत के बीच खड़े हो, वहीं अपने करियर में भी आप मतलब जिस मुकाम पर हो। तो उस तरह से जैसे कि अभी अभी हमारे गाने में ये था ना कि कौन ठीक है आजकल, मतलब वो पूछना चाहिए।

0: आपका गैस वैसे एकदम सही था कि 19 सितंबर को क्या है, मैंने आपको ये पूछा था। तो सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की हैं और एस्ट्रोनॉट, आपको पता ही अंतरिक्ष यात्री इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। तो उनका भी आप देखें, सितारे इस कदर वैज्ञानिक भी जो होते हैं, साइंटिस्ट हों या फिर एस्ट्रोनॉट हो, सबकी ज़िंदगी में फेमस होने के साथ साथ काम भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कठिन होता है। सोचो किसी ट्रिप पे जाना हो तो घर की याद आने लगती है बस एक दिन में। और यहाँ तो बात होती है कि जिस सुपरस्टार का जन्मदिन है उन्होंने तो अंतरिक्ष में बिना ग्रेविटी के मौत से लड़ते हुए 322 से ज़्यादा दिन बिताए हैं, सोचो। और हाँ, हैप्पी बर्थडे तो है ही उनका, उसी के साथ साथ जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सीखने को हर किसी से बहुत कुछ है, क्योंकि स्पेस कोई पिकनिक तो है नहीं, ना ही कोई छोटा सा ट्रिप है जहाँ मतलब ऐसे ही हमारी पृथ्वीलोक वाली वाइब्स आए, नहीं क्या? एकदम ही अलग होता है वो, मतलब काफ़ी भयंकर शारीरिक और मानसिक संघर्ष वहाँ रहता है। हम यहाँ कैसे हंसते हंसते बात कर लेते हैं हमारे गम के बारे में, जैसे आपने लिखा ही है मुझे, मैसेज में पढ़ रही हूँ आपका, 200 लीटर आंसू 300 किलोग्राम का गम, बस बस सब अपना अपना बोझ उठाए हुए चल रहे हैं, क्या करें। अपनी अपनी तकलीफें अपने दोस्तों से नहीं बांटेंगे तो किससे बांटेंगे, बताओ। तो यही बात है, मैं हूँ आपकी आरजे मृणमयी मनेजा, 865-766-1071 865-766-1071 है FM रेनबो मुंबई का व्हाट्सएप नंबर, जहां अपने दिल का फसाना इसी तरह मैं सुनाती रहती हूँ और साथ साथ आप सभी की बातें भी मैं देखती रहती हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग इलियास पटेल, दत्तात्रेय जो है वेलापुर से बिल्कुल, और फिरोज हाँ जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपके वेल विशेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह लक्ष्मी एंजॉय कर रही है वैदेही के साथ, और इस वक्त राजेंद्र, हमारे तीन राजेंद्र हैं जिन्होंने भी हमें इस वक्त मैसेज किया हुआ है, सभी के वैसे तो शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी ही देर में प्यारा सा गाना आपके पास आ रहा है।
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम,
2: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
1: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

9:50 हो रहे हैं इस वक्त, और आप लोगों का मैसेज भी मैं पढूं तो, ये गांव रिया बड़ी से जिला नागौर राजस्थान से नौरथ राम सुवासिया लिखते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरे गांव में बारिश हो रही है, क्या बात है। यहाँ मुंबई में वैसे भी कल रात को पूरी बारिश हो रही थी, पता नहीं आपके इलाके में, मुंबई भी बहुत काफ़ी बड़ा है तो हो रही थी कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो हो रही थी। अगले महीने में अच्छा आपको बर्थडे विश करूँगा, चलो याद भी रखा हुआ है आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। लेकिन बारिश की क्योंकि बात हो रही थी, मुंबई को भी मैं बता तो दूं कि जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो 33 डिग्री और 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है ये 24 घंटे में, जो सुबह 8 बजे की जानकारी है मौसम विभाग वाला। और शहर और आसपास के इलाके यानी मुंबई सिटी एंड सबर्ब्स, आसमान जो है आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा। मिस्टर बादल बिल्कुल आए हुए हैं, पप्पा के साथ नहीं जाने वाले, और हल्की से मध्यम बारिश मिस वर्षा भी साथ आई है, तो गरज के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है, तो कहाँ जाइएगा, भीग के ही नाचिएगा नहीं क्या। तो दर्शन वर्शन पंडाल जो मंडल बोलते हैं यहाँ पे, आप गए कि नहीं वो भी मुझे बताओ 8657661071 पर। थोड़ी देर में वैसे तो मैं आपको सुनाऊंगी 10 बजे समाचारों के अपडेट्स 2 मिनट के, और उसके बाद हमेशा की तरह नमस्ते भारत 10 से लेके 11 बजे तक। और मेरी जान आज पता है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, मतलब ये तो 19 सितंबर को है ही, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सफाई दिवस है वो समुद्री तटों पर पार्कों मतलब पार्क्स की बात करें या फिर समुदायों की जो सफाई है, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और क्योंकि वीकेंड शुरू हो चुका है उन लोगों को छोड़ते हुए जो कि शनिवार के दिन भी सैटरडे नहीं कर पा रहे, जो कि काम पर हैं, लेकिन बाकी के लोग पूरी जनता जिनके लिए आज छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन पर अगर आप भी सोशल सर्विस करना चाहते हैं, अपना सिविक सेंस दिखाना चाहते हैं, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे नमस्ते भारत में कि किस तरह ये किया जा सकता है ना।

ये गाना सुन रहे थे सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में। मनोज ने लिखा है अमाल मलिक का म्यूजिक। और परवाह नहीं करते करते किस तरह हर चीज को अपने हाथ में लेकर भी अच्छी चीजें की जा रही है, उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। सुनते रहो अपनी आरजे मृन्मयी मनजा के साथ FM रेनबो मुंबई 107.1।

वरुण धवन के बदलापुर का ये गाना बदला, अमित त्रिवेदी और डिवाइन। सुन रहे हो आप 107.1 FM रेनबो मुंबई पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का विषय का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं भारतीय तटरक्षक बल ने कल मुंबई के जुहू बीच पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक संस्थानों के प्रतिनिधि, एनसीसी कैडेट्स, विद्यार्थी और स्थानीय स्वयं सेवकों सहित करीब 500 लोग ने भाग लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी NTA की वेबसाइट

पर अपना परिणाम देख सकते हैं। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में कल भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्रीचरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ समाचार समाप्त।

स्वागत है आपका। सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1.44 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी के डीआरएम पर भी सुन सकते हो। और साथ ही साथ जैसे हमें सुबह से मैसेजेस भेज रहे हैं, आकांक्षा मनोज सिन्हा ने भी हमें भेजा हुआ है अहमदाबाद से कि आते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज़ वगैरह, बहुत प्यार आप देते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो पर इन्हीं की तरह अहमदाबाद से सुनना है तो न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। लाइव रेडियो सेक्शन में जाकर बस FM रेनबो मुंबई लिखना है तो किसी भी शहर में रहो, कहीं भी रहो, आराम से सुन सकते हो। तो शुरू करें।

बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि कौन सी फिल्म का गाना था और है। तो जो आखिरी वाला ब्लैक वाला गाना हमने सुना था, वैसे वो ब्लैक मेल फिल्म का था, अमित त्रिवेदी और डिवाइन, उसमें अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स थे और अमित त्रिवेदी का म्यूजिक। और ये था आर्टिकल 15 से शुरू करें क्या, स्लो चीता, नथिंग स्लो अबाउट हिम। और स्लो चीता के साथ DMC, काम भारी और स्पिटफायर, हमारे जो रैपर्स हैं बॉलीवुड में, ये आर्टिकल 15 का गाना था। उसी से, क्योंकि ये गाना पता है क्यों चुना मैंने, क्योंकि चीज़ें अपने हाथ में लेकर वो जो एक पहल दिखाना कि हमें करना है, तटीय साफ सफाई के बारे में बात कर ही रहे थे। और अगर आप आजकल के युवाओं का ट्रेंड देखो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अकेले अकेले भी पूरी की पूरी जो पानी की चीज़ें होती हैं, चाहे भले ही वो नदी हो या फिर कोई तालाब हो, मतलब समंदर से लेके ओशन क्लीनअप तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके ये बातें चल रही हैं कि एक अकेले या फिर एक ग्रुप ऑफ युवा जो ये कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। एक इंसान के शुरू करने से दूसरा इंसान भी वो प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है। सुन रहे हो इस वक्त नमस्ते भारत, सुनो गौर से दुनिया वालों। तो गौर से सुनना है, आज शनिवार है, कैसे हो मुझे बताओ, 865-66-1071 पर 8657-66-1071। और क्योंकि हर दिन हमारी थीम बदलती है, आज शनिवार है, तो सुनो गौर से दुनिया वालों में हम किसी एक सामाजिक विषय के बारे में बात करते हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी स्वच्छता के बारे में भी बात हो जाए।

0: रॉकस्टार का ये गाना सुन रहे हो इस वक्त मोहित चौहान की आवाज में, एआर रहमान का म्यूजिक। और बात सही है भाई, इको फ्रेंडली, नेचर के रक्षक, इस पे कुछ बोलने वाली हूँ मैं आपको।
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
2: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
1: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
0: आज पता है क्या हुआ, आते आते रास्ते में एक तो धूप बहुत खिली हुई थी बांद्रा वाली सीलिंग पे भी, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतनी अर्ली मॉर्निंग, इतनी सुबह, कल रात भर बारिश होने के बाद है धूप, कुछ भी चल रहा है। लेकिन जहां हम सोचते हैं कि घर पे जगह नहीं है, घर पे धूप नहीं है, तो हम पौधे कैसे लगाएं? नेचर के रक्षक, सफाई जो है, अगर हवा भी तो साफ कर सकते हैं, बट वो होता नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स जो हमारी वायु को किसी तरह प्रदूषण से बचा सके, वैसे लगा ले अपने इर्द गिर्द के, एयर प्योरीफायर लगाने से भी बच जाएं और अपने आप ही इको फ्रेंडली, नेचर के रक्षक बन के नेचर से ही अपना काम चला ले। पर धूप नहीं होती वगैरह वगैरह, जगह नहीं है, अब कई सारी चीज़ें होती हैं हम लोगों के सामने। पर ये रास्ते में आते आते ना फुल जैकी श्रॉफ के फ़ैन मुझे मिल गए हैं, जग्गू दादा। तो झाड़ लगाओ कैसे वो बोलते रहते हैं। और मुंबई के बाहर की जनता को बताऊं, यहाँ पौधों को झाड़ कहते हैं लोग। हाँ, तो प्लांट्स की बात हो रही है बेसिकली। तो वो ना ऑटो रिक्शा में इस तरफ उस तरफ हर तरफ उन्होंने पौधे लगा के रखे हुए थे, और क्या अपना ऑक्सीजन अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ युवा करे, हालांकि आज का मेरा फोकस युवा ही था, लेकिन देखो आप किसी भी उम्र में हो,

शुरुआत करने के लिए कभी भी लेट नहीं होता, है ना? सुनते रहो अपनी आरजे मृन्मयी मनोजा के साथ नमस्ते भारत, 107.1 FM रेनबो मुंबई पर।

जयदीप सहनी ने लिखा है, रफ्तार और गिरीश भी साथ और शराब फरीदी, अल्तमाश फरीदी की आवाज़ें आप सुन रहे थे। अंधा धुन का ये गाना 10:20 हो रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो मुंबई पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनजा। और हाँ, बात यही हो रही थी जैसे कि आपने लिखा है कि शनिवार के दिन आप ही की तरह हम भी काम पे जा रहे हैं, तो बस एक दूसरे का हाल चाल हम लोग लेते जा रहे हैं। और इको फ्रेंडली नेचर गार्ड स्पेशल जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा हमें मैसेज किया है मोहट ने। इस वक्त मो फरमान हमारे साथ हैं, पूरा जो परिवार है, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून भी हमारे साथ हैं। कुछ नए नाम भी मैं देख रही हूँ, तो स्वागत है आप सभी का। शिंदे भाई का ये मैं मैसेज पढ़ती हूँ, मिट्टी से आए बप्पा मिट्टी में ही मिल जाएंगे, प्रकृति को बिना नुकसान दिए हमारे दिलों में बस जाएंगे। इस बार मनाएं इको फ्रेंडली उत्सव ऐसा कि विघ्नहर्ता भी धरा की हरियाली देख मुस्कुराएंगे। बहुत ही सुंदर आपने लिखा हुआ है। और बात तो मतलब वैसे ही हमारी पारंपरिक प्रथा के अनुसार देखा जाए तो वही है, मेरा नाम भी तो वही है ना, दुर्गा पूजा में जो दुर्गा बनती है उनको भी तो मृन्मयी इसीलिए कहा जाता है जो उस वक्त पंडाल में बनती हैं। और बात तो सही है कि आप वापस जो ये जिंदगी के घेरे हैं उसी तरह हो जाता है, और इसीलिए तो विसर्जन

का जो ये समय है, दुख कितना भी हो, हम लोग बोल तो देते हैं कि पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी अगले साल जल्दी आओ, लेकिन यही है कि कुछ दिनों तक बहुत सारा लगाव लेके हम मन जोड़ तो लेते हैं बप्पा के साथ या फिर कोई भी पूजा हो जो पंडाल होता है उनके साथ, और हमारी प्यारी सी मूर्ति को हम जितना मिट्टी से बनाते हैं उतना ही विसर्जन में पारंपरिक रूप में वो तो पानी में मिल जाते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ ये थोड़ी है, कितना प्लास्टिक भाई साहब, इतना प्लास्टिक लोगों ने डाला हुआ रहता है, और वहाँ पर सिविक सेंस की बात ख़त्म नहीं होती। जैसे ये जो ये छोटे छोटे बच्चे ये तालाब साफ कर रहे हैं अकेले अकेले घुस के, आप सोचोगे कि इतनी मेहनत से सब कुछ साफ कर लिया तो अब बात खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं, ना ना ना, खाना थोड़ी ना हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कम पड़ जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं ना लोग, सिविक सेंस भी खा जा रहे हैं। यानी कि एक इंसान होने का जो एक महत्व होता है कि थोड़ी तो समझदारी अपने आसपास के लोगों के लिए, थोड़ी तो आप दिखाएं कि आप हैं, इंसान हैं, राक्षस नहीं है, लेकिन नहीं, बच्चे ने इतनी मेहनत से साफ किया रहेगा, उसके बाद जाके जो डस्टबिन बना के रखा हुआ है कि उसमें आप अब रखना कि इतनी मेहनत से इतने कीड़े मकोड़ों के बीच में साफ किया है तो अब शायद नहीं होगा, लेकिन अगले ही दिन लोग वहां पे जाके थूक के जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है।

एन एक्शन हीरो। हीरोज की बात तो हम कर ही रहे थे, लेकिन फिल्म का नाम भी है एन एक्शन हीरो। घेरी गाना हम सुन रहे हैं विवेक हरिहरन पराग।

काबरा और डेविल की आवाजों में, और बात सही, इनके साथ मेलिसा, सिद्धेश और कार्तिक भी हैं, कल्याणी वगैरह, बहुत सारी आवाजों के साथ आपने ये गाना सुना। लेकिन इसका जो मतलब है कि सचमुच सब कुछ घेरे में ही चल रहा है। आज यहाँ अभी सुबह है, तो जो लोग हमें विदेश से इस वक्त सुन रहे हैं वहाँ तो रात है, है ना, तो हुई कहीं सुबह है, तो सुबह की जो उम्मीद है हम लेके चल ही सकते हैं। वैसे भी सब कुछ घूम फिर के आता ही है, और आज हमने पूरे दिन में यही बात की है। वैसे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखा जाए तो तेरा ही कर्म वापस तो आएगा ही, है ना, तो देख संभल के चलना है। खुद से अगर कुछ अच्छा हो नहीं पाता तो सामाजिक विषय पर बात करें तो कम से कम किसी और ने कुछ बहुत ही अच्छा किया है, स्वच्छ भारत अभियान या हमारी ही गली को स्वच्छ किया, तो कम से कम उसे बिगाड़े तो नहीं ना, है ना।

0: भाग मिल्खा भाग से ये गाना सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में।
1: खास गणेशोत्सवानिमित्त जय गणेश नवीन डिपॉजिट स्कीम।
2: व्याजदर सर्वसाधारण ठेवीदार 7.25%, ज्येष्ठ नागरिक 7.40%, ठेव कालावधी 444 दिवस, मासिक आणि त्रैमासिक व्याजांच्या पर्यायांसह।
1: ही योजना फक्त 25 सप्टेंबर 2026 पर्यंतच, अटी लागू।
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध।

हम बात कर ही रहे थे कि किस तरह ये वीकेंड तो चले क्लीन अप वीकेंड में चल रहा है, यहाँ भी बीचेस पे यही तो खबर आई है कि 19 यानी कि आज ही का दिन सितंबर महीने का, और फिर जो कल होने वाला है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप, अंतर्राष्ट्रीय तटीय जो सफाई वाला दिवस है वो तो है ही, उस रूप में मनाया जा रहा है। तो आज और कल बहुत सारे स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो लोग सब कोस्टल क्लीनअप में लगे हुए हैं। जुहू बीच से लेकर सारे बीचेस की सफाई चल रही है। तो अगर अब इस वक्त आप बीचेस पर हो तो मुझे ज़रूर बताना कि मतलब सच में हाल

एतराज फिल्म का ये गाना सुन रहे हो आप इस वक्त। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में समीर ने से लिखा हुआ है, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है और ये है 107.1 एफएम रेनबो मुंबई, म्यूजिकली योर्स। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनजा। और बिल्कुल, जब कभी भी कोई अपना नज़रिया बदल कर चीज़ों को देखता है तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और धीरे धीरे बदल भी जाती है। अभी कृत्रिम बुद्धि यानी कि एआई का ज़माना भी है, लोग वही पुरानी जगहों की तस्वीरों को साफ करके भी देखते हैं जो आज के युवा हैं कि कैसी दिखाई देगी, और उसके बाद एक अलग ही जोश आता है। समंदर के किनारे प्यारे प्यारे गाने लिख लेना बड़ा मतलब आसान फिर भी आप कह लें, लेकिन वहाँ जाकर कीड़े मकोड़ों के बीच इतने सारी जो सेफ्टी रिस्क होती है, जो कोई भी ये कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत मतलब हाथ जोड़ के हम नमस्कार कर रहे हैं आपको। वो तो चले आप बहुत बढ़िया काम कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल भी ज़रूर रखिएगा। ग्लोव्स वगैरह सेफ्टी के लिए ये आप ज़रूर लेके चलें, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये जो ट्रेंड चल रहा है बहुत ही सही चल रहा है। चले इस चक्कर जब हमारे देश के युवा खुद ही हाथ उठाकर पैर उठाकर कूद पड़े हैं तो कुछ तो होगा ज़रूर, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है? 8657661071 हमारे चैनल का व्हाट्सएप है, वहां लिख के बताओ।

10:45 युवा का ये गाना सुन रहे हो और हमारे जो एकदम ही नौजवान युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित लिख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब इधर उधर चीज़ें लोगों ने फेंकी हुई होती है, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और हाँ, कहीं ना कहीं कदम उठाने के लिए हम नहीं बोल पाते। मुझे पता है आप सब लोग वही लिख रहे हो कि जैसे कि कोई गाड़ी भी चला रहे हैं तो खाना क्यों नहीं खाते हैं, वो भी बहुत बुरा लगता है। उसके बाद आप जब कुछ भी चबा रहे हैं अपनी एनर्जी के लिए, फिर वो आप रास्ते में ही थूक रहे हैं क्योंकि आप तो चलाते ही जा रहे हैं। ये बात एकदम सही है जो आपने लिखी है, लेकिन बताया जाए तो कैसे बताया जाए हमारी दिल की बात। कभी कभी मैं बैठी हुई होती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा ना करो ना, मतलब कि रुक जाओ, अगर समय है हमारे हाथ में तो खाना खा लो, इतनी भी ना मेहनत करो कि अपनी भी सेहत ख़राब हो जाए और फिर सामने वाले को भी परेशानी हो। रास्ते में हर किसी को, देश तो हमारा ही है। तो सामाजिक विषय, सिविक सेंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं नमस्ते भारत में। हर दिन एक नई थीम होती है और शनिवार का दिन है। सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है, ये आपने हमें लिख के भेजा हुआ है। इस वक्त हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप से दूर से सुन रहे हैं अनिल हैं, उषा हैं, अनुश्री और धनश्री, उन्हीं के साथ में सूरज, प्राची और एकलव्य भी हैं। बहुत सारे नए नाम भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पुराने वाले, हमारे नए वाले, और दादर से तो हमें बाबा ने सीधा सिद्धि विनायक के दर्शन ही करवा दिए, तो थोड़ा सा वो आशीर्वाद भी मुझे मिल गया नहीं क्या। तो गणेश चतुर्थी की बात पर ही मैं कहती हूँ कि दानार्थी चतुर्थी होना चाहिए, है ना, कि ऐसा हो कि बस जो कूड़ेदान है वहीं पर हम दान करें कचरे वाला। चले मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और हमेशा खुश रहें। मैं आपकी आरजे मृण्मयी मनजा, जाने का मेरा वक्त हो चुका है। दुआओं में, प्रार्थनाओं में याद रखना।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

नमस्कार और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। मुंबई में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह SNDT महिला विश्वविद्यालय में रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में श्री सिंह नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खट्ट से बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होंगी। ठाणे में केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव 20वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में शामिल होंगे। मुंबई में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 घंटों के दौरान मुंबई और उपनगरों में मध्यम बारिश होने की संभावना है।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: इसी म्यूजिकली योर्स पर आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज RJ अभिनव। हेलो, हाय, आदाब, सत श्री अकाल, और लेकर आया हूं वही आपका फेवरेट शो, वो है ब्रेक फ्री। जी हां, बैक टू बैक रहेंगे, बहुत सारे बातें, सॉन्ग्स और बहुत सारी चोलबाजियाँ भी, हम लोगों के बीच में गुफ्तगू भी। ब्रेक फ्री रहेगा और उसके बाद म्यूजिक कैफे, और उसके बाद लेकर आऊँगा हेट एंड हॉट, और बीच में कुछ कुछ ब्रेक भी रहेंगे और समाचार भी रहेंगे। अब आज मैं जिस कलाकार के बारे में, जिस आर्टिस्ट के बारे में, जिस सिंगर के बारे में बात करने वाला हूँ, उसका एक गीत आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, और अब बात करेंगे इसके बाद उसी के बारे में, पेश करता हूँ ये गीत।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

बढ़ाऊ आप लोगों के साथ आपका हमराज आर जेब ना ब्रेक फ्री में। कभी कभी ना हमें किसी बड़े शोर की जरूरत नहीं होती, बस एक आवाज चाहिए होती है जो सीधे दिल तक जाए। एक ऐसी आवाज जिसमें ठहराव है, सफर है, खासकर जर्नी। इस बात पर गौर फरमाइएगा, थोड़ी सी उदासी है और बहुत सारी सच्चाई। और आज का ब्रेक फ्री उसी आवाज के नाम लकी अली। लकी अली की आवाज को सुनना जैसे किसी लंबी रोड ट्रिप पर निकल जाना। खिड़की खुली है, हवा चेहरे से बात कर रही है और जिंदगी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सिंपल लगने लगती है। लकी अली की सबसे खास बात शायद यही है कि उनकी आवाज आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करती है, वो बस गाती है और आप सुनते सुनते उसमें अपने किस्से ढूंढ लेते हैं। लेकर आऊंगा लकी के ऐसे ही बहुत सारे गाने, जैसे लाया था सफरनामा, और अब जो मेरा फेवरेट है सोच रहा हूँ पहले ही उसे आप लोगों के पास ले आऊं, और वो है हैरत। जब एक्चुअली आपके आसपास बहुत सारी चीजें घट रही हों और उसके बाद आपको उस पर हैरत होने लग जाए, या किसी दिन दोस्त के साथ ट्रिप पे निकले हो, चाहे गाड़ी लेकर बाइक लेकर जा रहे हो कहीं, या कार लेकर जा रहे हो दोस्तों के साथ गोवा की ट्रिप पर, या घूमने जा रहे हो लोनावाला, तो आपको जो हैरत होती है पूरी कायनात को देखकर, अपने साथ साथी को देखकर, अपने इस प्यारे वक्त को लेकर और अपनी इस पूरी सारी नेचर को लेकर, सृष्टि को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, तो क्या होता है बस पता चलता है रॉक के इस गाने के जरिए, हैरत।

बनाऊ में आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे है बना। और जी हाँ, ब्रेक फ्री जारी है। आज सबसे बड़ी बात ये भी है खासम खास कि आज लकी अली का जन्मदिन है। हम उन्हें बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं लकी अली को, क्योंकि एक अलहदा सिंगर, एक अलग आवाज वाले सिंगर जो ठहराव लेकर चलते हैं, सफर लेकर चलते हैं और बहुत सारी जिंदगी से जुड़ी बातें लेकर चलते हैं। सिंपल सी लगने लगती जिंदगी थोड़ी देर के लिए उनकी म्यूजिक को सुनने के बाद, आवाज़ को सुनने के बाद। लकी अली की खास बात शायद यही है, बस क्या है कि वो बस गाते हैं और आप सुनते सुनते उसमें अपने किस्से ढूंढ लेते हैं। उनके गानों में एक अलग तरह की सिंपलिसिटी है, ना बहुत ज़्यादा सजावट, ना दिखावा। जैसे कोई दोस्त सामने बैठ कर धीरे से कह रहा हो कि चल थोड़ा दूर चलते हैं। और शायद इसी वजह से लकी अली की म्यूज़िक की उम्र इतनी लंबी है। कई गाने ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुनते हैं, लेकिन लकी अली के गाने ऐसे हैं जिन्हें हम जीते हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है कि आपको इंडी पॉप का ज़माना याद आ रहा होगा, वो भी कि जब स्पेशली हम लोग वो गाने सुनते थे। आज मैं आऊँगा आप लोगों के पास वापस, बीच में छोटा ब्रेक भी लूँगा, लेकिन अब हैरत के बाद एक और गाना लेकर आता हूँ ऐसे ही। कौन सा? अभी जा आप लोग भी आ ही गए।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

मरहबा आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अपना ब्रेक फ्री जारी है, लकी अली के सॉन्ग्स जारी हैं। ये था अभिजा, यानी कि मतलब कुछ कुछ सैड, कुछ कुछ प्यारे प्यारे से मेलोडियस सॉन्ग्स भी। और अब अगर 90s और अर्ली 2000s की यादों को किसी आवाज़ में कैद करना हो तो लकी अली की आवाज़ उसमें ज़रूर होगी। उस सनम में एक ऐसा गाना जिसने प्यार को बहुत बड़े बड़े शब्दों में नहीं बताया, बस एक एहसास रखा, किसी की याद, दूरी और वो खामोशी जिसमें बहुत कुछ कहा जा चुका होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इतने साल बाद भी वो सनम सुनते ही लगता है कि कुछ चीज़ें बदली नहीं, वही शाम, वही हवा, वही यादें। वो भी लेकर आऊँगा, लेकिन पहले लेकर आता हूँ आप लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद वो सनम।

और कई बार उल्टा होता है, कई बार ये भी हो जाता है कि एक्चुअली जो आप ही के चाहने वाले लोग हैं, आप ही के दोस्त हैं, वो आपको याद दिला देते हैं। जी हाँ, आज एक और भी मूवी की रिलीजिंग हुई थी 2014 में 19 सितंबर को, उसके भी काफ़ी साल पूरे हो रहे हैं, और 2014 के बाद अब यानी कि 2024 10 साल और 25-26-12 साल। तो मूवी थी दावत इश्क, जी हाँ उसमें मैंने भी काम किया, अतीक करोल मैंने किया था, तो उसके गाने ही बड़े अच्छे थे, आप ज़रूर सुनिएगा क्योंकि भाई दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दावत इश्क के साथ साथ और भी बहुत सारे गाने लाऊंगा, सबसे पहले लेकर आता हूं क्योंकि एक्चुअली वक्त कम और बातें और भी कम, अब गाने ज़्यादा होंगे, और वो है ओ सनम।

और मैं लकी अली के एक दो सॉन्ग जरूर लाऊंगा। जिंदगी को सीरियसली लेने से पहले जिंदगी को जीना भी सीखो, फिर आता ये गाना, यानी कि पूरी जनरेशन को एक ही बात समझ में आई, वो थी एक पल का जीना। ऋतिक रोशन का होना प्यारे का इस गाने में उन्होंने साथ ही एक एनर्जी एक अलग क्रिएट की थी और लोगों को पसंद आया था। लेकिन लकी अली की आवाज़ ने ऐसे सिर्फ एक डांस नंबर नहीं रहने दिया, एक फिलॉसफी दे दी, जो पल सामने है उसे पूरी तरह जी लो क्योंकि अगला पल हमेशा हाथ में नहीं होता। लकी अली के गानों में हमेशा एक ट्रेवलर दिखाई देता है, एक ऐसा इंसान किसी मंजिल के पीछे भागने से ज़्यादा रास्ते को महसूस करता है। यही वजह है कि उनका म्यूजिक सुनते हुए अक्सर लगता है कि आप कहीं जा रहे हो, कहाँ पता नहीं, लेकिन जाना ज़रूरी है और यही तो है ब्रेक फ्री। देखा है ऐसे ही किसी को, ऐसे ही सफ़र का वो गाना, या तेरी यादें आती हैं, या अनजानी राहों में, इस तरह के काफ़ी सारे गाने आपने सुने होंगे। तेरी मेरे साथ जो होता है, थोड़ी देर के लिए रोज़मर्रा की दौड़ से बाहर निकलना, कितनी हंसी जिंदगी, कुछ गाने हमें खुश करते हैं, इमोशनल करते हैं, और कुछ गाने यादों को और रंगीन बनाते हैं। लकी अली और ट्रेवल हमेशा साथ में चलते हैं। बातें और भी थी करता, लेकिन अब क्योंकि वक्त है कम तो बहुत सारे गाने लेकर आने वाला हूं, तो अब लेकर आऊंगा मैं खुदा हाफिज़, यानी कि अनजाना अनजानी।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

नमस्कार और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी अक्सर गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाल दी जाती है, लेकिन भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आयोजित पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारत की तुलना में विकसित देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 6 गुना अधिक है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के प्रश्न पत्र आगरा स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस के 2 कर्मचारियों ने अपने जूतों के तलवे में छिपाकर बाहर निकाले थे और उन्होंने महज 8,000 रुपए के लिए ये काम किया। ठाणे शहर पुलिस के करीब 3,500 पन्नों के आरोप पत्र में ये दावा किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत रूस पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया गया है। रूसी तेल और गैस के प्रमुख खरीदार देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ईरान पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को भी 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज भारतीय समयानुसार 2:30 बजे से पलोमा मिजोहू स्टेडियम में शुरू होगा। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत भारत के ध्वजवाहक होंगे।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, वक्त हो चला है अब म्यूजिक कैफे का और आज है डांस डे। वैसे तो आज काफी सारे और भी दिन हैं लेकिन डांस डे स्पेशल लेकर आप लोगों के पास लाया लेकर मैं आया हूँ। आज दोनों दिन है, आज है एक्चुअली राधा अष्टमी मनाई जाती है, राधा रानी के जन्मोत्सव का पावन पर्व होता है। आज का दिन अपने आप में बहुत खास है। वैसे तो बहुत सारे खास चीजें लेकर आया हूँ, लकी अली का बर्थडे, ईशो कोपिकर का बर्थडे और स्पेशली 19 सितंबर मेरी फिल्म दावतेज जो पहले रिलीज हुई थी उसके भी हो गए 12 साल और आज है राधा अष्टमी। म्यूजिक कैफे है खास इसी के लिए और आज ये भी है कि डांस डे मनाया जाता है, नेशनल डांस डे। तो राधा और कृष्ण का रिश्ता सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति में प्रेम समर्पण और भक्ति का एक बेहद खूबसूरत सा प्रतीक है, सिंबल है। म्यूजिक की दुनिया में तो प्रेम की अपनी ही एक अलग भाषा है, कभी शब्दों में, कभी स्वरों में और कभी सिर्फ धुन में। तो आज म्यूजिक कैफे की शुरुआत करेंगे हम लोग प्रेम और भक्ति की इसी भावना के साथ, यानी कि मतलब डांस डे। डांस के साथ साथ तो है और भी प्यारी प्यारी सी बातें, प्यारे प्यारे से गाने रहेंगे, 90s का नॉस्टैल्जिया चलेगा। पहले मैं नाच फिल्म का ये गीत आप लोगों के पास लेकर आऊंगा, मैं नाच नाच के जोत जलाऊं, या तो वो ये रहे बल्कि ये ना भी रहे तो साथ में आप लोगों के पास लेकर आऊंगा नाच नाच के श्वेता पंडित।

हूँ आप लोगों के बीच में, आपका हमराज आरजे अवनव जी। हाँ, बात चल रही थी अभी राधा अष्टमी की, यानी कि कृष्ण का नाम लेते ही राधा का नाम तो आ ही जाता है। कहते हैं राधा कृष्ण या कृष्ण राधा, राधा का नाम आते ही प्रेम का एहसास। ब्रिज की गलियों से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक आज राधा रानी के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जा रही हैं। मथुरा वृंदावन की बात ही अलग है, वहां की हवा में जैसे आज भी राधा कृष्ण की प्रेम कथा की कोई पुरानी धुन सुनाई देती है। लेकिन हाँ, मैं बात करूंगा आपसे बरसाने की भी, कि बरसाना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि राधा रानी का गाँव तो भाई वही माना जाता है। जब बात प्रेम की हो तो म्यूजिक कैफे में म्यूजिक

0: कैसे पीछे रह सकता है भाई। जो है अलबेला मदनैनो वाला, इस गाने में बात कृष्णा की तो होती है, साथ साथ राधा की भी होती है। प्यार में डूबी, प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, कृष्णा से मिलती है तोड़ के हर बंधन, वो राधा है। पेश करता हूं, वो कृष्णा है।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

देखिए, अब अगर ज़रा सा मूड बदल देते हैं, क्योंकि म्यूज़िक कैफ़े का एक हिस्सा हमेशा ही रिजर्व्ड है उन गानों के लिए जिनके साथ हमारी यादें जुड़ी हैं। अगर नॉस्टैल्जिया की बात हो तो हम भला 2000 को भी कैसे बोल सकते हैं, है ना। 80s 90s तो होता ही है, कैसेट्स भी थे वैसे, हालांकि 90s में तो वैसे 2000 तक भी वो चले हैं। कैसेट्स है, वॉकमैन है, रेडियो है, किसी के लिए रिकॉर्ड कैसेट बनाना था और सबसे बड़ी बात गाने आने का इंतजार था। आज हम एक क्लिक में हज़ारों सॉन्ग सुन सकते हैं, लेकिन 90s में एक फेवरेट सॉन्ग सुनने के लिए कभी कभी पूरा एल्बम इंतजार करवाता था, और शायद इसी इंतजार ने म्यूज़िक को और स्पेशल बना दिया था। वेल, नेशनल डांस डे आज एक और खास ओकेजन है। नेशनल डांस डे, डांस यानी कि नाच, नृत्य सिर्फ स्टेप्स का नाम नहीं है, डांस एक्सप्रेशन है, एनर्जी है और शरीर को एक्टिव रखने का एक बेहद मज़ेदार तरीका भी। मज़ेदार इसलिए कि आप एंजॉय भी करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि आपका फेवरेट सॉन्ग बजता है और बिना सोचे पैर अपने आप मूव करने लगते हैं? भाई मेरे साथ तो ज़रूर ऐसा होता है, और यही तो म्यूज़िक की पावर है। आप जिम जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर कोई किलर बीट बज जाए तो शरीर कहता है कि चलो भाई आज कार्डियो यही हो जाएगा। तो आज नेशनल डांस डे पर म्यूज़िक सुनिए, उठिए, थोड़ा मूव कीजिए, और अगर आसपास कोई देख रहा हो तो उसे भी साधना चाहिए। वो अजनबी हो ही गया, नाच नाच के हो गया, वो किसना है हुआ, और अब फायर मुझ पर हर हसीना, यू आर माई सोनिया। तो पहले लेकर चलता हूँ मुझ पर हर हसीना इश्क विश्क का ये गीत।

स्पेशली मैं आप लोगों के बीच बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ, और अब मैं कुछ और गीत भी लेकर आऊँगा। हालांकि डांस डे है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो बहुत सारे डांस नंबर्स को लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के पास। प्यार का मतलब सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम 90s के रोमांटिक सॉन्ग्स में नहीं था। एक नज़र, एक चिट्ठी, एक फ़ोन कॉल और कभी कभी सिर्फ एक गाना और पूरा मैसेज समझ में आ जाता था। हालांकि 90s भी था तो फिर साथ में डांस वाले भी दुकानें थे, और मेलोडीज, मेमोरीज और गुड वाइब्स के नाम, प्रेम की बात, राधाष्टमी की बात, नेशनल डांस डे और एनर्जी की बात भी हो रही है। और इन दोनों के बीच अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो है म्यूज़िक, संगीत। म्यूज़िक कभी सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो महसूस होता है। कभी उस पर पैर थरकते हैं, कभी वो सीधे दिल में उतर जाता है। मुंबई प्लस म्यूज़िक। मुंबई में म्यूज़िक की अपनी अलग कहानी है। सुबह लोकल ट्रेन में ईयरफोन्स लगाए लोग, ट्रैफिक सिग्नल्स पर गुनगुनाते लोग, मरीन ड्राइव पर हेडफोन्स के साथ बैठे लोग, जिम में अपनी प्लेलिस्ट पर वर्कआउट करते लोग, और घर में कोई पुराना गाना सुनकर अचानक कहता है, अरे ये गाना कितने साल बाद सुना। यही मुंबई है, तेज भी, म्यूजिकल भी, और बकायदा FM रेनबो मुंबई 107.1 म्यूजिकल यूवर्स सुनते हुए लोग। आप लोग तो हैं ही, मैं भी हूँ साथ में भाई, उसको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हर जगह ये चलता है। मेरे पास तो इतने सारे कॉल्स और मैसेज आपके आते हैं जो लगातार आ रहे हैं कि आपको बात करना और सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे और यहाँ FM रेनबो मुंबई को। तो अब पेश करता हूँ, क्योंकि डांस नंबर्स की बात थी, दिल ने दिल को पुकारा।

जी हाँ, दिल ने दिल को पुकारा और बस अब आपके मुस्कुराहट पर, आपकी पुकार पर तो मैं भी आ गया हूँ। ओह, कितने कितने साल बाद कितने कितने सारे गाने जो स्पेशली हम लोगों ने पहले भी सुन रखे थे। एक छोटा सा सवाल आपसे, ऐसा कौन सा गाना है जिसे सुनते ही आपको कोई खास मेमोरी वापस आ जाती है? स्कूल, कॉलेज, पहला क्रश, पहली सैलरी, दोस्तों के साथ कोई सफर, या वो पुराना प्यार जिसका नाम अभी याद नहीं करना चाहते लेकिन गाना आज भी याद है? क्योंकि हम अक्सर लोगों को भूल जाते हैं लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई गाना वो बहुत मुश्किल से भूलता है। म्यूजिक मेमोरीज का सबसे खूबसूरत शॉर्टकट है।

राधा अष्टमी के दिन प्रेम की बात करते हुए राधा कृष्ण की याद आना स्वाभाविक है, जो कि आज हमने याद भी किया और गाना भी सुना। उनकी कथा हमें प्रेम के कई रंग दिखाती है, मिलना, बिछड़ना, प्रतीक्षा, समर्पण और याद। शायद इसी वजह से सदियों बाद भी राधा कृष्ण भारतीय संगीत, कविता, डांस और कला में लगातार दिखाई देते हैं, कभी भजन में, कभी क्लासिकल डांस में, और बस इसी तरह सारी चीज़ों में, हमारी ज़िंदगी की गतिविधियों में, कभी लोकगीत में, कभी मॉडर्न म्यूज़िक में भी। वक्त बदलता गया लेकिन प्रेम की धुन वही रही। नेशनल डांस डे पर एक बात याद रखिए, डांस करने के लिए आपको ट्रेंड डांसर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई परफेक्ट स्टेप नहीं है, बस म्यूज़िक चलाइए और थोड़ा सा मूव कीजिए, क्योंकि कई बार बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और माइंड को बस एक अच्छा गाना। जी हाँ, और अगर दोनों एक साथ काम हो जाए तो इससे बेहतर डील क्या होगी। तो आज जहाँ हैं वहीं थोड़ा सा रिदम पकड़िए, क्योंकि म्यूजिक कैफे में आज सिर्फ कान नहीं, पैर भी सुन रहे हैं।

तो दोस्तों, देखते ही देखते म्यूजिक कैफे का ये खूबसूरत एक घंटा भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज हमने राधाअष्टमी के पावन अवसर पर प्रेम और भक्ति की बात की, नेशनल डांस डे पर म्यूजिक के साथ थोड़ा झूमने की बात की, 90s के मेलोडीज के साथ कुछ पुरानी यादों के दरवाजे भी खोले। लेकिन म्यूजिक की खासियत है कि एक गाना खत्म होता है तो दूसरा शुरू। जिंदगी भी ऐसी होती है, एक चैप्टर खत्म होता है और कोई नई धुन शुरू हो जाती है। मैं हूं आपका अमराज आरजे वनम, आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे और सिर्फ एफएम रेनबो मुंबई 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। म्यूजिकल यूअर्स, म्यूजिक सिर्फ बजता नहीं है यहाँ पर, ये याद बनकर साथ में चलता है। और पेश करता हूँ कुछ और गीत इसी म्यूजिक कैफे में, डांस नंबर्स वाले।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: पर मैं बना हूँ आप लोगों के साथ जी हाँ, यानी कि 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका हमरा जार जय बना हिट एंड आउट शुरू हो चुका है। मुझे मालूम है शो का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि ये लिसनर्स चॉइस होता है, यानी कि लिसनर्स की जो चॉइस होती है उसके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। और जी हाँ, मैंने आप लोगों की चॉइसेस लिख कर रखी हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसके लिए। मेरे पास कुछ कॉल्स भी आए थे, शुरुआत करता हूँ उसी के लिए। तो मेरे पास मिंटू टॉमस जी का भी एक एक्चुअली गाना आया था और वो है दिल विल प्यार वार, शागिर्द मूवी से पेश करता हूँ वही।

एक तो प्रकार एक गीतों की फरमाइश मेरे पास आई थी, जी हाँ अभी भी बनी हुई है। और मेरे पास प्रकाश शिंदे जी ने गीत की फरमाइश की थी जुबिन गर्ग के लिए, उनको वो सिंगर बहुत पसंद हैं और उन्हीं का गाना है जीना क्या तेरे बिना। और उसके बाद एक और गीत है वो है कितनी हसीन जिंदगी, ये प्रमोद जी ने फरमाइश की थी बकायदा प्रकाश शिंदे जी के लिए। तो स्पेशली ये दोनों गाने लेकर आता हूँ आप लोगों के पास बैक टू बैक।

शो है हिट एंड हॉट और मैं बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ आपका हमराज आरजे अभिनव जी। हाँ, बहुत सारी फरमाइशें हैं जो मेरे पास आती रहती हैं, तो प्लीज़ बरामद मानिएगा। कई बार कोशिश करता हूँ एक के बाद एक पूरी करने की। तो अब मेरे पास कुछ फरमाइशें हैं, इसमें था पालचक जी की, जिनका गाना था एक पल का जीना, और उसके बाद गोपी का कॉलेज की लड़कियाँ, और राकेश जी का तेरे बिन। तो पेश करता हूँ बैक टू बैक ये गीत।

कुछ और गीत हैं बैक टू बैक मेरे पास। कैसा लगा हमारा शो, अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। नंबर है 8657661071। इंटरनेट पर हर जगह सोशल मीडिया पर हम लोग आप लोगों को मिल जाएंगे FM रेनबो मुंबई के नाम से, और मेरा नाम है आरजे अभिनव पराशर, सभी जगहों पर आप लोगों को मिल जाऊंगा। अगला गीत कॉलेज की लड़कियां, शिवा गोप ने उसकी फरमाइश मुझसे की थी, और उसके बाद है तेरे बिन, राकेश जी ने इसकी फरमाइश की थी, और उसके बाद चेतन, स्वर्ण, शुभ लक्ष्मी, पंकज, मुकेश, नूरत और आप सभी जो मेरे साथ जुड़े हुए थे और जिन सब लोगों ने मुझे मैसेज भेजे, उन सबके लिए गीत है यार बिना चैन का, हारे साहिब का। पेश करता हूँ बैक टू बैक गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

0: उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी X@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उभरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
6: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
2: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
6: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार सलाम, 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी।

फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। 5:08 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और जहां पर शुरू है कार्यक्रम लव यू जिंदगी, और मैं हूं आरजे प्रिया। फाइनली इट्स सैटरडे इवनिंग, और मेरी तरफ से आप सभी सुनने वालों को प्यार भरा एक सवाल है कि कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कैसे हैं आप सब। सब चंगा सी, सगा ठीक ना। जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए और अपने हालचाल जो है उसकी जानकारी हम तक पहुंचाती रहिए। और क्योंकि ये सवाल बहुत प्यारा है, ये बहुत कुछ कहने को दिल करता है जब कोई इस तरह का सवाल पूछता है कि कैसे हो, क्या चल रहा है। तो चलिए, मैं भी बहुत दिनों बाद आई हूँ, इस वक्त मैंने सोचा आपसे ये सवाल पूछ लूँ और साथ में प्यारे प्यारे गीत भी आपको सुनाऊँ। सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

कितना अच्छा लगता है जब आप किसी से कहते हो कि कैसे हैं आप। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि कैसे हैं आप, तो आप सभी के मैसेजेस इस तरह से आ रहे हैं जैसे हम लोग बहुत दिनों बाद मेहमान या फ्रेंड्स मिलते हैं या रिश्तेदारों में किसी त्यौहार पर मिलते हैं या शादी में मिलते हैं और जब एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसे हैं, तो मैं बतानी दिखा नहीं सकती कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे हर कोई पूछ रहा है हम तो अच्छे हैं आप कैसी हैं। तो मैं तो अच्छी हूँ और आप सभी को गौरी गणपति की शुभकामनाएं। और गौरी जी का विसर्जन अब होगा तो आपके यहाँ फेस्टिवल काफ़ी मूड होगा कई लोगों के घर पे। वैसे भी पूरी मुंबई, पूरा महाराष्ट्र, मतलब पूरा भारत गणेश उत्सव की धूम मची हुई है पूरे भारत में। और आप सभी के जो मैसेजेस आ रहे हैं और आप इतने प्यार से मुझे भी पूछ रहे हैं कि आप कैसी हैं, तो मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ और आपके साथ मैं भी शो एंजॉय कर रही हूँ। लव यू ज़िंदगी। और जैसे कि मैंने आप कह रहे हैं कि आप सब ठीक है, तो कभी कभी एक ये होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि हम ठीक ही हैं, कभी कभी बोल भी देना चाहिए कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे कि हमारे एक श्रोता है अंकित करके, उन्होंने लिखा कि 100 दिन ही बचे हैं साल ख़त्म होने के लिए, तो थोड़े से परेशान हैं। बिल्कुल साल ख़त्म हो रहा है और 2026 इस तरह से भाग के आना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, इतनी स्पीड, अभी तो ऐसी स्पीड बढ़ जाएगी देखिए। तो खैर कोई बात नहीं है, और सच कहूँ तो पूरे मतलब हफ्ते की भाग दौड़, डेडलाइंस, बॉस की चिक चिक, त्यौहार, घर के कामकाज, ये सब के बाद जब सैटरडे आता है ना, तो सच में दिल को सुकून देता है। तो आप भी बड़े ही सुकून के साथ सुनते रहिए कार्यक्रम लव यू ज़िंदगी, जहाँ पे है आरजे प्रिया आपके साथ।

5:20 भी हो गया। देखिए हमारे शो का नाम भले ही जिंदगी से जुड़ा है, यानी कि लव यू जिंदगी, लेकिन आज मैं सच में सोच कर आई थी कि आज जिंदगी को लेकर कोई बातें नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं दूंगी कि किस तरह से जिंदगी जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब भागना चाहिए। सैटरडे है यार, बस बस बस हो गया। लाइफ को इतने सीरियसली लेने की चीज़ ही नहीं है ये लाइफ, ये समझ में तो आता है। बस चिल कीजिए, और सच में हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम जीना भूल जाते हैं कि कुछ वक्त बाद ये करेंगे वो करेंगे। मतलब परफेक्ट चाहिए ना, तो हम आज का दिन जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ज़िंदगी कोई एक्सेल शीट नहीं है कि वीकेंड पर भी हम उसे मेंटेन करें कि नहीं अभी ये करना है वो करना है। अगर हफ्ते भर में कोई काम बिगड़ भी गया है ना, तो ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करनी है। अपनी ठंडी कॉफ़ी या गर्मा गर्म चाय उठाइए, लंबी सांस लीजिए और बस इतना कहिए, जाने दो यार, आज शनिवार है, बस आर कुछ आज जो है ना आज कुछ नहीं करना है।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours. आकाशवाणी FM Rainbow.
1: जी हाँ, जिंदगी के ये सुनहरे पल जो है वो FM रेनबो के संग आप गुजारिए, देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आएगी। और 5:36 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी। बॉस, अगर आप भी हफ्ते भर के किसी स्ट्रेस को लेकर अब तक बैठे हैं तो आज उसे कचरे के डिब्बे में डालने का दिन है। और मुझे तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर या लैंडलाइन पर आप कॉल करके बताइए कि आपका इस वीकेंड का प्लान क्या है, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो आप हमें सुन रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? गणपति बप्पा देखने जाएंगे, बहुत खूबसूरत झांकियाँ मुंबई में हैं वो देखने जाएंगे, कल का कुछ आपका प्लान है ज़रूर हमें बताइए। और एक और बात है कि वो कौन सी ऐसी बात है जिसे आप अपने दिल से जाने दो कहना चाहते हैं, बस जाने दो। और आपके जो मैसेजेस हैं मैं ज़रूर पढ़ूंगी। और आप सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जहां पर है आरजे प्रिया आपके साथ। और अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो नोट कर लीजिए, 8657661

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए, जापानी

कम करती हूँ मैं, मॉर्निंग में ही रहती हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है, बस प्यार आ रहा है खुद पे। और चलिए, आप सभी ने मुझे बहुत प्यारे मैसेजेस किए हैं, मंगेश जोशी, विजेंद्र घाटू लकुला से, स्मिता पालकर जी जो हैं, संजय पाटिल है, और अजय साखरे इंदौर से, राजेंद्र परमार, हितेंद्र दास है, मुकेश वालिया है देहरादून से, पंकज मोहड़ है, पंडित डॉक्टर प्रसाद कुलकर्णी जी हैं, अशोक पाटिल है, रघुनाथ जी हैं कोल्हापुर से, माधवी है शिरगांवकर, राजेंद्र शर्मा, प्रकाश शिंदे, डॉक्टर अंजू है, अंकित है, संजय दर्शन है, वैद्य ही है, राकेश माथुर जी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने जिस तरह से जवाब दिए हैं ना कि क्या करने वाले हैं, मैंने पूछा था तो बहुत से लोगों का तो प्लान है भाई गणपति बापा के दर्शन करेंगे, और विजेंद्र घाटोल जो शेगांव में है वो वहाँ पे गणपति देखने गए हैं और इंजॉय कर रहे हैं, स्मिता बालकर जी भी अभी काफ़ी घूम घाम कर आई हैं, सैर कर कर आई हैं दुनिया की बहुत सी जगह की, और अभी वो रिलैक्स होगी, एंजॉय करेगी। बहुत से लोग हैं जो बस गणेश दर्शन करने वाले हैं, ये सारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5:54 हो चुके हैं और 6:05 पर ठीक आप सुनेंगे, जी हाँ, नागपुर से प्रादेशिक समाचार, और 6:15 से लेकर 7 तक कार्यक्रम आप सुनेंगे अंदाज़े भैया, जहाँ पर शायरी और गज़लें सुनाई जाएगी, ठीक 7 बजे से लेकर 7:10 तक प्रादेशिक समाचार आप मुंबई आकाशवाणी केंद्र से सुनेंगे, और उसके बाद 7:10 से लेकर 8 तक कार्यक्रम हम तुम, जी हाँ, आपकी पसंद के गीत सुनाए जाएंगे। अगर आपकी पसंद का कोई गीत आप सुनना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 6 के बाद से, और मैं वो नोट कर लूँगी और कोशिश करूँगी कि सबकी पसंद के गीत मैं सुनाऊँ। लेकिन बीच बीच में मैं सवाल पूछने वाली हूँ आपसे, और जो सही जवाब देगा उसका ही गाना प्ले होगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। लव यू ज़िंदगी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए।

सच कहूँ मैं आपके साथ अभी शो जो आपको कर रहे हैं हम और आपके साथ जो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मैं खुद बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि शाम के वक्त का शो वैसे बहुत

5:53 हो चुके हैं और लव यू जिंदगी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं. और वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है बस बातें करूं, कुछ भी ज्ञान नहीं दूं. और आप सभी ने तो वैसे बता दिया है कि कोई कुछ करना चाहता है आज, कोई आराम करना चाहता है, कोई गणेश पंडालों में जाकर बप्पा के दर्शन करना चाहते हैं. लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी बरती है, जहाँ पर ज़्यादा रश हो, भीड़ भाड़ हो, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको भी घुस जाना चाहिए. एक कहते हैं ना, मौके की नज़ाकत को समझिए और अपनी सेफ्टी, अपने जो साथ में लोग होंगे उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए. ये तो बात हो गई. सोशल मीडिया पे पिछले दिनों ना 80 के दशक की बातें हो रही थी. आप में से कितने लोगों ने उसे मतलब एंजॉय किया? उस एक लहर सी दौड़ पड़ी थी 2-3 दिनों के लिए कि सोशल मीडिया पर जैसे हमें सोशल मीडिया, चैट GPT जैसे फीचर्स हैं वो हमें 80 के दशक में लेके जा रहे थे. और वाकई में हर कोई अपनी फोटोज डाल रहा था कि वो 80 के दशक में कैसा दिखता होगा या दिखेंगे अगर वापस गए तो. बड़ा ही मज़ेदार था, लेकिन क्या कहे, मतलब हर कोई उस दशक में जाना चाहता था. और वो जो ऑरा था ना उस वक्त का, वो अब जाके महसूस होता है कि अभी जो पल है हम उसे कितना ग्रांटेड लेते हैं. शायद 80 के दशक में जो लोग होंगे, जवान होंगे, उन्हें लगता होगा यार वक्त आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, दुनिया आगे क्यों नहीं जा रही है. हम अभी आगे हैं 2026 में, और जब हम 1980 में चले गए थे तो हमारे वो कलरफुल ड्रेस, और सोशल मीडिया पे अगर आप में से कई लोग एक्टिव हैं तो देखे होंगे, एकदम घने घने बाल और कलरफुल ड्रेसेस, वो जीन्स डेनिम की पहने हुए लड़के लड़कियां, एक मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था थोड़े वक्त के लिए. लेकिन हाँ, ये बात भी ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर जब इस तरह की बाढ़ आ जाती है किसी चीज़ की कि ऐसा करो, कोई ऐप इस्तेमाल करो और ऐसा करो, तो थोड़ी सावधानी भी बरतनी वैसे ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हमारी जो तस्वीरें हैं उनका भी इस्तेमाल कुछ इधर उधर हो सकता है. तो चलिए इसी बात पे एक और गाना सुनाती हूँ. बातें कम, गाना ज़्यादा सुनाने का मेरा इरादा है.

जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 5:58 हो चुके हैं और ठीक 6 बजे आप सुनेंगे, 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार जो नागपुर केंद्र से प्रसारित होंगे। और एक आखिरी गीत आपको सुनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ 6:15 पर कार्यक्रम अंदाजे बया के साथ। सुनते रहिए, कहीं मत जाइए, मैं यू गई यू आई।

मुस्कुराती भोर की पहली किरण को, ढलती शाम के एकांत को और रात के सन्नाटे में धड़कते हर उस दिल को जो लफ्जों से मोहब्बत करता है, मेरा यानी कि आर्य प्रिया का प्यार भरा सलाम। जब जज्बात हद से गुजर जाते हैं तो वो लफ्ज बन जाते हैं, और जब वो लफ्ज सुरों की चादर ओढ़ लेते हैं तो वो गजल बन जाते हैं। सुरमई शाम की इस दहलीज पर सुरों और लफ्जों के इसी खूबसूरत तालमेल का नाम है अंदाज़े बयां।

आज की ये खास महफिल समर्पित है उर्दू अदब की जान शायरा अंजुम रहबर साहिबा के नाम, जिनकी शायरी में सीधे दिल में उतर जाने का हुनर है। और इस सफर में हमारा साथ देगी हिंदी सिनेमा की वो चुनिंदा गजलें जिन्होंने वक्त को रोक दिया है। अंजुम रहबर साहिबा का एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आता है। वो लिखती है, अश्क आंखों में छिपाते हुए थक जाता हूँ, अश्क आंखों में छुपाते हुए थक जाता हूँ, मैं तो इस नक्श को मिटाते हुए थक जाता हूँ।

वक्त हो चला है 6:28 और बाजार फिल्म की ये बेहद ही प्यारी गजल दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। मोहब्बत का पहला एहसास भी कुछ ऐसा ही होता है ना, जब कोई पहली बार सामने आता है तो जुबान खामोश हो जाती है और आंखें बात करने लगती हैं। अंजुम रहबर जी ने इसी कशिश को अपने लफ्जों में कुछ इस तरह पिरोया है। वो लिखती हैं कि तुम्हारी अंजुमे जा को कोई सहारा मिले, कभी तो मौज को दरिया का कोई किनारा मिले। मोहब्बत में जब दूरियां बढ़ती हैं तो यादें और भी गहरी हो जाती हैं। चलिए यादों की इस सिलसिले को आवाज देते हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी गजल से जिसे जगजीत सिंह ने अमर कर दिया।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खास इस्तकबाल है आपके पसंदीदा शो अंदाज़े बयां में। आज हम अंजुम रहबर जी की हसीन शायरी के साए में हिंदी फिल्मों की चुनिंदा गजलों का लुत्फ उठा रहे हैं। जब दिल तन्हा हो और यादों का कारवा गुजर रहा हो तो क्या कहे, ऐसे दर्द को अंजुम रहबर साहिबा ने बेहद सादगी से लिखा है। वो लिखती हैं कि बिछड़ के मुझसे वो रोया तो था मगर यूं ही, बिछड़ के मुझसे वो रोया तो था मगर यूं ही, उसे भी रस्म वफा को निभाना था शायद। ऐसे में ये बहुत ही प्यारी गज़ल है जो मुझे हमेशा याद आती है, मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ और मुझे यकीन है कि ये आपको भी बेहद पसंद आएगी और आपने भी कई बार सुनी होगी।

एक ऐसा फनकार है जो आम तौर पर पर्दा नशीन रहता है, ये फ़ख्र हासिल है म्यूज़िक इंडिया को कि उस पर्दा नशीन को पर्दे से बाहर खींच लिया। उस फनकार का नाम भूपेंद्र है।

जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

श्रोताओं, शायरी सिर्फ दर्द नहीं बांटती, वो हमें जीने का हौसला भी देती है। अंजुम रहवर जी की शायरी में जहां एक तरफ दर्द की सूफियाना तड़प है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी को अपने दम पर जीने का जज्बा भी है। उनका एक शेर है, वो लिखती है कि तूफान से लड़ना तो मुकद्दर है हमारा, साहिल पे ठहरने की तमन्ना नहीं करते। और मुशायरों में धूम मचाने वाला उनका एक और मशहूर शेर है, ये सोच करके खिजा का मिजाज क्या होगा, गुलाब अपनी कली को हंसाए रखता है।

शाम के 6:58 हो चुके हैं, ठीक 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत समाचार मराठी में, और 7:15 पर कार्यक्रम हम तुम में आपकी पसंद के गीत मैं आपको सुनाऊंगी। तो बस मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं यू गई और यू आई।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। 7:11 हो चुके हैं और शुरू हो चुका है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम, जिसका आप करते हैं बेसब्री से इंतजार।

जी हाँ, कार्यक्रम हम तुम सुनते सुनते हमारा भी ये जो सफ़र है अब से लेकर 8 बजे तक का ऐसे ही कट जाएगा, गाने सुनते सुनते। और आप सभी की इतनी सारी फरमाइशें हैं कि मैं उनको गिनते गिनते सोच गई कि रात के 11 तो बज ही जाएंगे अगर मैं ये सारे गीत प्ले करूँ तो। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं अभी प्रोग्राम। जिनके गीत बजेंगे बजेंगे, लेकिन मैं बजाऊँगी, ज़रूर कोशिश करूँगी। हीरामणि वर्मा जो है वो शिकारी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, महाजन कीर्तनपुरी है द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, बलकरण वर्मा, अंजलि वर्मा और प्रहलाद वर्मा जो है ये सब सलामी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। तो ये 3 गीत मैं बैक टू बैक सुनाती हूँ और देखते हैं कितना टाइम बचता है और बाकी सब के गीत कैसे मैं सुना पाऊँगी। सुनते रहिए, कहीं मत जाइए, आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम तुम।

7:31 हो चुके हैं और मैं 3 लोगों के आपकी फरमाइशें प्ले कर रही हूँ, अयाज चौधरी, पंकज मोहर, प्रकाश शिंदे और दीपा पालकर, इन चारों की फरमाइशें पंकज मोहर और प्रकाश शिंदे सुनना चाहते हैं। जी हाँ, फिल्म मोहब्बत का गीत, क्योंकि इस फिल्म को आज रिलीज हुए 29 साल पूरे हुए हैं। अयाज चौधरी सुनना चाहते हैं आदमी खिलौना है फिल्म का टाइटल सॉन्ग, और स्मिता पालकर सुनना चाहती है सजदा, जी हाँ माय नेम इज़ खान फिल्म से ये गीत। तो बैक टू बैक 3 गीत सुनाऊंगी, सुनते रहिए कार्यक्रम हम तुम।

7:50 हो चुके हैं और सिर्फ दो गाने बजा सकती हूँ, और इन दो गानों की फरमाइश किसने की है ये तो मैं बताऊँगी, लेकिन इससे पहले पंकज चिंचोलकर और विजेंद्र घाटोल जी ने हम किसी से कम नहीं फिल्म से क्या हुआ तेरा वादा फिल्म गाने की फरमाइश की थी, और जादू तेरी नज़र फिल्म डर से अहमदाबाद से आकांक्षा सिन्हा की फरमाइश थी, और स्वयंवर फिल्म से फिरोज सिंह गनपुरिया सुनना चाहते हैं बेहद ही रोमांटिक गीत, और अंकित जो है वो सुनना चाहते हैं सुर फिल्म का एक बेहद प्यारा नगमा। तो सुनते रहिए FM रेनबो।

हमारे जो भी श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी और हम प्ले नहीं कर पाए हैं उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अगली बार ज़रूर प्ले करेंगे। राजेश माथुर जी हैं, मुकेश कश्यप, पंकज मोहर, स्मिता पालकर, प्रकाश शिंदे, चंद्रकांत रोड़े नांदेड़ से, कल्पना राजू उल्लासनगर से, विजेंद्र घाटोल दत्तात्रेय आड़त वेलापुर से हैं, रघुनाथ जी हैं कोल्हापुर से हैं, और राजेंद्र शर्मा, हितेन दास असम से, सुनील पांचाल, हीरामन वर्मा महाराज, कीर्तनपुरी गोस्वामी, बाल करण वर्मा, मेहरा अरोरा है, दिग्दर्शक और कविता इस पेज से भी है, संजय पाटिल है, और फिरोज सिंह अनपुरिया, संजय दर्शन और अजय साखरे, श्रीधर बालचंद्रन, प्रणव शिंदे, राजेंद्र परमार, मुकेश वालिया, अरविंद कुलकर्णी, नामदेव किरवे, मंगेश जोशी, डॉक्टर प्रसाद कुलकर्णी, माधवी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
4: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
6: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग

0: को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
1: I think close to 8 cargo planes have arrived.
2: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
1: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
0: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाई, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं में हमेशा पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात कही गई है और स्पोर्ट्स यानी खेल शायद उसका सबसे बेहतरीन जरिया है।
2: एक गेंद हवा में उठती है, एक दौड़ शुरू होती है और शुरू होती है खिलाड़ियों की जद्दोजहद। दर्शकों की नजरें गेंद पर टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं और फिर एक पल आता है जाने कितनी धड़कने एक लय पकड़ लेती है और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दुनिया में कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है। और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए

0: तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
1: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
0: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ, जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
1: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था, जहां एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास किया।
0: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
1: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई, तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था, जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के 3 कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे, तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
2: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when you push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होने हॉन, जिसका नाम पारंपरिक जापनीज शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
0: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली।
3: वतश्चिवा 第20回アジア競技大会の

0: 審判員、
1: 技術役員を代表し、
0: スポーツマンシップの精神にのっとり、大会の規則を尊重、遵守し、公正なジャッジを行うことを約束します。
2: एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
3: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांग, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विम्सी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
2: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसीलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात ये रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेकबॉल में भी कल दो पदक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि LA 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है, और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
4: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूँगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट, मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान, इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट ऑल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
2: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे, सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9:00 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
3: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है, ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर एमएमए तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे। इन्हीं में वुशु भी शामिल हैं, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
2: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में

0: नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विक्स, कैसे हो? बहुत दिनों बाद ये शो करने हो, मैं बहुत बहुत हैप्पी हो गई आपकी वॉइस सुन के। आया करो ये शोज करने, प्लीज प्लीज। आपकी फेमस, बहुत बहुत फेमस रिया दिल्ली जी। रिया बिल्कुल मेरे दोस्त, और आपसे मुलाकात वाकई में बहुत दिनों बाद हुई है। जी बिल्कुल, मुलाकात होती रहती है बीच बीच में। हाँ, ये शो भी मुलाकात हो जाती है शो में भी कभी कभी, और अगली बार भी होगी, अगले शनिवार भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा, बहुत अच्छे नगमे लेकर आया हूँ। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, क्या टूटा है अंदर अंदर। और हमारे दोस्त हैं, उसके बाद कुछ लिखा नहीं है, और भी कुछ लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्त। आदाब आदाब सरकार, हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से। फारूक अली खान, फैजी फराज, फहीन फरहान, फारिया ताहिरा, आदाब सरकार। अभी एक दावत से घर आया हूँ, आपकी आवाज़ सुनकर दिल खुश हो गया। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, और ये दावत शब्द सुनकर मैं बहुत खुश हो गया जी। और ख़ासकर आपके, आपसे सुनता हूँ ना तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, अजीब से मतलब बहुत ही खुशनुमा, बहुत अच्छा लगता है। और हम ये दुआ करेंगे ये दावतें आपकी ज़िंदगी में हमेशा आती रहें जी। रंगे महफिल में आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्जो। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपका सरकार, शुक्रिया धन्यवाद हमारी इस महफिल में शिरकत करने के लिए। हस्तिनापुर मेरठ से अंश शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ। और दोस्तों कहते हैं कि महफिल तो बन गई है, और इस महफिल में हम अकेले कैसे हो गए? बिल्कुल भरी हुई महफिल है, और हम तन्हा क्यों महसूस कर रहे हैं? कल रात भी कुछ ऐसा ही समा था, फिर भी हम अकेले थे, तन्हा थे। मौसम इतना खुशगवार था, फिर भी मन पता नहीं क्यों क्या ढूंढ रहा था। हम जानते थे क्या ढूंढ रहा है, लेकिन वो जो शख्स हमारी जिंदगी में कभी था, आज हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, या यूं कहें कि जो अभी अभी दस्तक दी है जिसने हमारे दिल पर, वो भी साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिल से कुछ मचलते हुए जज्बात ऐसे निकलते हैं।

0: लिरिक्स, नाइस गजल्स फ्रॉम रिया। रिया बहुत अच्छी अच्छी और भी गजल आपके लिए लेकर आया हूँ, बने रहिएगा। बस लौटता हूँ छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी जुड़े हमारे साथ शांतिनगर सोनीपत से। एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, नाइस प्लेलिस्ट ऑफ गजल्स, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सैटरडे, सच ए गुड इवनिंग एंड नाइट वी आर लिस्टिंग प्रोग्राम योर्स, बिग थैंक्स फॉर बेस्ट प्रोग्राम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमारे इस महफिल में बने रहने के लिए। और भी अच्छी गजल्स अभी आएंगे, आगे बने रहिएगा। और दोस्तों, ये सफ़र जो है गज़लों का, इस कार्यक्रम का, इस सफ़र का, आगे भी बना रहेगा। बस लौटता हूँ छोटे से अंतराल के बाद।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

छोटे से अंतराल के बाद सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम रंगे में फिल्में। और रंगे में फिल्में आज हूं मैं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। गजल पसंद आ रही है? इस रात की तन्हाई में गजलें सुनने का मजा, जो मजा होता है वो अपने आप में अलग ही होता है। और फिर इस छोटे से कस्बे में गीत और संगीत रेडियो बड़े ही सुकून से सुना जाता है। चारों तरफ खामोशी और गंगा का किनारा, एकदम शांति का माहौल है। कस्बा कुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब, बहुत ही खुशकिस्मत है सरकार, मैं तो वहीं पहुंच गया जहां आपके शब्दों ने हमें पहुंचाया। बिल्कुल समझ सकता हूं कितना आनंद का पल होता है ये। और बिल्कुल इसको एंजॉय कीजिए, इस खामोशी में भी एक प्यारा सा संगीत होता है, मधुर सी आवाज होती है ना।

चलो सो जाएं, हो चुकी उनसे मुलाकात, चलो सो जाएं। लोग इकरार ए वफा करके भुला देते हैं, लोग इकरार ए वफा करके भुला देते हैं, ये नहीं कोई नई बात, चलो सो जाएं।

दोस्तों, वक्त तकरीबन हो गया है कि मैं आपसे इस प्रोग्राम से विदा लूं। इस वादे के साथ कि अगले शनिवार फिर करेंगे मुलाकात। प्रोग्राम आपकी याद रही, आपकी याद आती रही, और रंग महफिल के प्रोग्राम के माध्यम से मिलेंगे आकाशवाणी रेनबो पर ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। 12 बज चुके हैं, लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव में जीत पर परिषद को बधाई दी है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने और पश्चिम रेलवे के उधाना इकाई सोगांद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भास्कर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची, आज बांग्लादेश से मुकाबला होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 12:03 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

आज के इस प्रोग्राम जीरो आवर शो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपका दोस्त, नाम आपने कभी न कभी सुना ही होगा, अर्चित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

सोनू निगम जी की आवाज में साथिया। 12:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अलचित के साथ।

0: और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 12:23 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: शुरू हुई है। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

12:33 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ प्रोग्राम जीरो आवर शो में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

12:59 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आवर शो। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नव नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में जीत पर परिषद को बधाई दी है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने और पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाथ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची, आज बांग्लादेश से मुकाबला होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। एक बज चुके हैं, 1:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 1:26 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

रामकथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। रात्रि के 2 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में जीत पर परिषद को बधाई दी है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने और पश्चिमी रेलवे के उधना इकाई सोनगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज बड़े पैमाने पर देश भर में युवाओं को एकजुट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भास्कर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। आज बांग्लादेश से होगा मुकाबला। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 2:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भुलाए न बने मेरे यानी अलचित के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: दो बजकर 17 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: 2:14

24 मिनट हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

2:53 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भुलाए न बने मेरे यानी अर्चित के साथ। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में जीत पर परिषद को बधाई दी है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन में 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने और पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगात खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दी है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज बड़े पैमाने पर देश भर में युवाओं को एकजुट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अंत में खेल जगत की बात करें तो 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची, आज बांग्लादेश से मुकाबला होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलेडीज।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा है इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 4 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया।

कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को नए सिरे से मजबूत करने का आह्वान किया है। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज बड़े पैमाने पर देश भर में युवाओं को एकजुट किया जाएगा। एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। 20वें एशियाई खेल का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। मनु भास्कर और पवन सहरावत ने भारतीय दल की अगुवाई की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज सेमीफाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: गोरे की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर